0: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़िदली हो।
2: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
3: और द नूरु मालूमातों दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319-55-23-404।
4: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
2: द जिले टांग द अवाम द फारा द खुशहाली जेरे उस द हर किस्म बीमारियानो द इलाज द फारा तासुता द नूर खारुनु तलो जरूरत निश्ता
5: उस तासो पोखपल शहर टांग के दो पिशावर यो मशहूर होम्यो फिजिशियन डॉक्टर नूर हसन खान यूसुफजई से सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल के दो मरीजानो चेकअप कवि
2: आया कतासुता मुख्तलिफ अमराज हुई मसलन जुड़ुनु दर्दुना पटु दर्दुना दुगुर्दे काने त्रिखी काने प्रोस्टेट मिर्गी जनाना और मर्दाना पुट मरजुनु इलाज खुप तसल्ले सर की दलेशी
5: पता सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल नूर मार्केट पुराना डखाना गली तंग बाजार टांग।
2: मोबाइल नंबर
6: 3 minutes.
7: लरे जल दग दे कमल आंदे दगा प्रोडक्ट दराफी जान दे जका पहर जटा प्रवान दे क्रीमान होनर हम देर क्रीमान दे दगा टिक टाक वाल क्रीम दे आर जनफी नवीना क्रीम न देर में लागवाले पमखदा होना एरा गाड़ी मचे टिकटा क्रीम दिरा वाड़े आओ मचे पमख दिला गवाले लहावे और जे ना एक शाम लेकड़ा मैना
6: ओ सिद्ध रहमाना दाख दर फिजान दर शो टाइम शो यार ओ कमराना रज़ा भी खोचे रेडियो आनकू।

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल ले, अविलाजी सुनत अमल ले।
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली हो ढेर गर्जिदली कड़ीदली हो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और द नूरु मालूमातो दे पारा पदगल नंबर काल कवले शे
2: 0319-55-23-404
4: दन्ना दन्ना दाताओं संग सासुरिजे तख्तारा करें।

मैं सोने सजनों एक दफा बात वेलकम प्रोग्राम इज खुश आमदीद। आज द प्रोग्राम हद में मामूल जो पिछले प्रोग्राम होने सवाल होसी खिलगप होसी मुसीकी होसी सॉन्ग होसेन गावन होसेन गीत होसेन मेरे नाल नाल रासो उम्मीद रखे न कि बिल्कुल तुसा इंतजार ही छोसो तुसा होसो या नो सो मैं पूरा हफ्ता इंतजार करें कि सुहा रासी और अपने सजणा नाल मिलसूँ सजणा दे नाल प्रोग्राम करेसूँ सजणा दी कालां सुनसूँ सजणा को गालियां करेसूँ सजण गालियां करेसन खिलसूँ हसूँ सवाल। दोस्तों पिछली दफ़ा एक सवाल है दो सवाल हैं लेकिन मैं तो माफ़ी मंगना कि पिछली दफ़ा दो सवाल एक सवाल का जवाब तो मैं दे गीता कि चाचा इन ते उन ने मैं तुले को इनाम दीता है चाहते मच्छर ते मक्खी का जरा सवाल है वह तो रह गया ही लेकिन मैं बाद ही सोच की थे कि मेरे सज्जन खफे होसेन नाराज़ होसेन किसान धोखा कर गया सवाल का जवाब तो सबको नस दीता दो सवाल हैं एक दा दे गए तो एक दा तो चुप करके तो गया चा लेकिन अफसोस ये करें कि टाइम की कमी होती टाइम का कई भी पता नहीं लगता टाइम पानी वगू वह तो लिहाजा मैं माफ़ी मंगना कि पिछले सवाल का मैं सबको जवाब ना दे सका तो वो माफ़ी के नाल नाल वो पिछले सवाल का जवाब मखा मक्खी तो मच्छर का जरा हाई तो वो ये सवाल है कि डी को तो मच्छर फिट वह तो रात को मक्खियाँ फिट वह दोस्तों बड़े अच्छे अच्छे जबरदस्त कॉलर करके तो जबरदस्त मैं को सजना जवाब दिता है किस्म किस्म के जवाब दी सारा ठीक ठाक हैं सवाल का जवाब दर असल ये है कि डी को तो मक्खी होंगी तो रात को मच्छर होंगे लेकिन डी को मच्छर फिट वह तो रात को मक्खी फिट वी दोस्तों डी को मच्छर को नहीं डसींदा तो रात को मक्खी को नहीं डसींदा इन वास्ते डी को मच्छर फिट वह तो रात को मक्खी फिट वी दोस्तों इवें किस्म का अज एक जबरदस्त सवाल आनम बड़ा अच्छा सवाल आनम बिल्कुल एक तुसा नसीहत चाहो मैं को सोच समझ के जवाब दे सो सवाल मैं सबको इनवाइस करे सा सवाल द मैं सबको दसे सा थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू है मेरे नाल रहो ते बिल्कुल हंस गप भी होसी खिल गप भी होसी दोस्तों जिंदगी हर प्रोग्राम में आखदा कि जिंदगी को हसीन बनाने वास्ते अपने आप को सच्चा साबित करे सो अपने आप ही मोहब्बत पैदा करे सो इखलाक पैदा करे सो नेक नीति सफा और सफा नीयत सफा जमीर का इस्तेमाल करे सो अच्छा इंसान बन सो अल्लाह सबको अच्छा इंसान बनाव तो अल्लाह ताला खुशी थींदा लोग ही खुश थींदे। दोस्तों मैं बचपन की गाल तो सबको करा कि मैं छोटा हम घर शैतानी करेंदा हम बहुत शैतानी तो प्यू मैं को मरेंदा हों अबू मरेंदा हों लेकिन अम्मी आ वेंदी इ गाल करेंदी कि एकू नमर ए छोटा है एकू समझ को नहीं तो वह मैं को छोड़ देंदा ही क्योंकि छोटा हम मैं को समझ नहीं आंदा वो मैं को छोड़ देंदा ही रोजाना मेरा इो खाता होंगे लड़ाई भिड़ाई झगड़े फसाद गवांडिया नाल गलियाला नाल लेकिन इया माँ गाल करेंदी आई कि छोटा है ये कुछ समझ कोनी मेरे दोस्तों थोड़ा जहाँ बी वा थी मैं को सबक ही सटने जा दीनी सबक दो ते स्कूल आले सबक दो लेकिन उतना मैं नलायक लोगों के सारे स्कूल ही यानी कि कितने जमातों में पढ़ा लोगों के 100-150 नंबर आंदे मैदा 400 नंबर आंदे मेरे सोने सजनो सुनो मैदा 350-400 नंबर आंदा ही लेकिन तालीम का नहीं नलायकी का मैदा नंबर आंदे कि नलायक जबरदस्त एक नंबर नलायक होना लेकिन प्यू अबू मेरा उस्ताद टीचर को गिला देने कि मेरा पुत्र इतना क्यों नलायक आंदा पिए के हिसाब है वो आखिर तेरा पुत्र बहु नलायक है बहु यह है लेकिन औलाद अगू तो बहु वा जवान पुत्र औलाद थी वे लेकिन उनके अगू वो निकी दसींदी है बचपन दसींदी है छोटी औलाद दसींदी है अबू मास्टर को यह कहना होंगे कि ए ला छोटा है ई को ला समझ को नहीं समझ आती वत अल्लाह खैर करे सी थींदा सजनो बचपन की समझ में आपको प्यो अम्मी कहती ये ला छोटा ही को समझ को नहीं थोड़ा पठड़ थी गया वाती मास्टर को कहना ई को समझ नहीं आती है समझ ई को नहीं आती अपनी जात आसी उनके बाद ना लैक हम स्कूल कुछ वा थी गया दोस्तों मैं को दुकान कर दी तेने दुकान तो वन लगा तीजी चौथी दीवार दुकान दी हई नाले गवांढी नाल मैं लड़ गया क्योंकि ऊँ छणका की तई मैं छणका की थी मैदा पानी ऊँदी दुकान तो छणका द गए उनका समान खराब थी गई तो साड़ी जबरदस्त हाथ पई तो लड़ाई थी गई आई लो खबर थी गई आपड़े पराया गया जेल फैसले दी जने बैठे तो वाती अबू इया गाल की थी कि यार तुसा कण मैं माफ़ी मंगदा ए मैदा पुत्र ई को ला समझ कोनी नवा नवी दुकानदारी है नवा दुकानदार बनते पे ई को समझ कोनी बस ई गाल को खत्म कर दियो तो ओ अगवाले जी उन आके चलो ठीक है जी एकदम प्यू आखद पिया है कि जी ई को समझ कोनी तो ठीक है अस ही गाल को छोड़ दूँ दोस्तों बाजार ची मेरी ई गाल मशहूर थी कि जी ई को ला समझ कोनी ए ला समझींदा नहीं पिया तो थींदा कुछ अरसे कण बाद जी मेरे सोने सजनो अम्मा अबू ने शादी का फैसला किया कि एक शादी कर दूँ तो मेरे कने गाल आई है खिलौने मेरे दोस्तों ये लतीफा है तो गाल भी इन्हें तुम मैं को आपे कॉल करको इन्हें मैं को दसे सो
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਥੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਅੰਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਬੂ ਆਖਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਥੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਕਣ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਕਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੈ ਕੋਲਾ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਕੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਬਸ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਮੂਡ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਅਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਕਿ ਤੈ ਕੋਲਾ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਕੋਨੀ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਗਵਾਂਢਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਗੋਸ਼ਤ, ਜੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਣਾਣੇ ਨੇ ਵੀਹ ਤਰਬੀ ਗਿਣਾਣੇ ਨੇ, ਤਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਖੀਰ ਵਿਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਆਖਾ ਜੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿੱਠੀਏ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਰਲੋਏ, ਤੂੰ ਗਿਣਾਇਆ, ਤੈ ਕੋਲਾ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਸੋਧੀ ਦੀ ਤੈ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਡੇ ਕਿੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੌਦਾ ਆਣੇਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖੀ ਗਈ ਮੈਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਘੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾ ਤੂੰ ਮੈਰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਮੈਰੀ ਸਮਝ ਕੱਢਾ ਹੋ ਸੀ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੋ ਪੇਰ ਸੀ ਗਨ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੋ ਪੇਰ ਸੀ ਗਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਿਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਕੇ ਥੀਆ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਮੈਂ ਕੋ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਤੈ ਕੋ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਤੈ ਕੋ ਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੋ, ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਓ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੰਜਣ ਦਾ ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਜਣੋ ਕਿ ਅਬੂ ਤੂੰ ਹੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਤੈ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਤੈ ਕੋ ਸਮਝ ਕੱਢਾ ਸੀ, ਅਬੂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਤੈ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਢਾ ਸਨ, ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੱਢਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢਾ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਢਾ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੈ ਕੋ ਸਮਝ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਝੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੈ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋਨੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਢਾ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢਾ ਸਨ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕਿਆ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਕਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਰਾਇਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸਾਡਾ ਨਿਮਤੁਲਾ।

0: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांकी नशिया, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91.8, Radio Pagam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4. जनाब से बहर के चार बज चुके हैं और चार बजते ही जनाब तीनों स्टेशन से एक साथ हम आपकी खिदमत में केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं कि जिसका नाम है केसन टी टाइम शो। तो जनाब डेयर इस्माइल खान पहाड़पुर और टांग के अंदर सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाचीज, मामा एंड मामीज, दादा एंड दादीज एंड नाना एंड नानीज, ऑफकोर्स सभी सुनने वालों को खलील ताबे शामान का ढेर सारा सलाम, ढेर सारी नेक तमन्नाएं, ढेर सारी सलामती की दुआएं और ढेर सारा प्यार आप तमाम लिसनर्स के नाम, यूजर्स के नाम, फैंस के नाम। जी तो सामने कराम सफेद चार बजती है जनाब, ये आवाज आपको सुनने को मिलती है और ये आवाज किस कंपनी की है? जी जनाब अब तो आप बखूबी जान चुके होंगे इन्हीं तमाम इलाकों के अंदर डेरा पहाड़पुर और टांग के अंदर जो तीनों स्टेशन से हमें एक साथ सुनते हैं जनाब, ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज और ये आवाज खूबसूरती की आवाज है, ये आवाज हुस्न की आवाज है, ये आवाज सेहत की, शिफा की आवाज है। आप तमाम सुनने वालों को हम अपने शो के अंदर वेलकम करते हैं और मेरा आप लोगों के साथ जो है वो पूरा एक घंटे का होता है, यानी कि अब से लेकर ठीक 5 बजे तक

किसमें तक पहुंचाना है कि किसन के पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ के अंदर तब्दीली ला सकती हैं, आपकी लाइफ के अंदर चेंज ला सकती हैं, और कैसा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ के अंदर, आपकी स्किन केयर के अंदर, आपकी स्किन किसन नेचुरल पार्क फायदा पहुंचा सकती है। आप किसन नेचुरल पार्क की इस वक्त तीन सेगमेंट्स में, पहला और सबसे बड़ा हमारा जो सेगमेंट है वो जनाब खूबसूरती का है, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है, चाहे आपको फेस वॉश चाहिए हो, चाहे आपको नेचुरल हैंडक्राफ्टेड सोप चाहिए हो, चाहे आपको स्किन टोनर चाहिए हो, चाहे आपको क्रीम्स चाहिए हो, तो केसन के पास एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मौजूद है। दूसरे नंबर के ऊपर जनाब हमारे पास जो है हेयर केयर के प्रोडक्ट है, यानी कि दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो बालों की खूबसूरती के लिए है कि जनाब केसन के पास दो बड़े मेन प्रोडक्ट हैं, केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू, जो कि आपके बालों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है जनाब हेल्थ का पोर्टफोलियो, के जिसके अंदर हम आपको हेल्थ से रिलेटेड नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद डेफिनेटली आप बहुत सारे फायदे हासिल कर पाते हैं। सामने कराम इंसान अक्सर आप लोगों के साथ हम वो बातें शेयर करते हैं कि जो बातें आपकी स्किन को फायदा पहुंचाती हैं, ऐसी स्किन केयर, ऐसी डेली रूटीन आपकी कौन सी होनी चाहिए कि जिससे आपकी स्किन जो है बेहतर हो सकती है। तो जनाब कहते हैं कि ये जो मुस्कुराना होता है, ठीक है जनाब, जब आप मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, आप मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर आती है, तो क्या इसका भी आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट आता है? क्या मुस्कुराने से कोई तब्दीली रुनुमा होती है आपकी स्किन के अंदर, आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर, आपके ब्लड के अंदर? क्या मुस्कुराना जो है वो आपकी शख्सियत को, मुस्कुराने से डेफिनेटली आप, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जब कोई मुस्कुराता है तो वो खूबसूरत लगता है, वो अच्छा लगता है, और जो मुस्कुराना होता है वो खुशी की अलामत होती है कि कोई बंदा मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि बंदा बड़ा खुश है। तो बिल्कुल जनाब ऐसा ही है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो इसके असरात आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं। जब इंसान दिल से मुस्कुराता है, दिल से मुस्कुराना, एक तो बनावटी मुस्कुराहट भी होती है, एक दिल से मुस्कुराना होता है, एक जनाब के चेहरे के मसल्स हरकत करते हैं, खून की रवानी बेहतर होती है और चेहरा ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग नजर आता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आप देखें किसी खुशहाल बंदे को देखेंगे तो उसका चेहरा खिला खिला से लगेगा, इसके मुकाबले में दूसरा जो उदास बैठा है उसके चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं होगा, उसकी रंगत भी आपको काली काली से लग रही होगी। तो ये वो हमारा अमल है जनाब, ठीक है जनाब, मुस्कुराने की आदत की, ये आपके स्किन के ऊपर कितना इफेक्ट डालता है। कुदरती खून की गर्दिश बेहतर होती है और चेहरा के ऊपर नेचुरल ग्लो और नेचुरल चमक आती है, स्ट्रेस कम होता है, ठीक है जनाब। जहनी दबाव जब कम होता है तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जनाब, जब जहनी दबाव कम होता है तो वो कम बनता है, जिससे एक्नी और जिल्द की खराबी कम हो सकती है, यानी कि एक्नी का निकलना, दानों का भी निकलना कम खुश रहने की वजह से होता है, ठीक है जनाब। चेहरे के ऊपर रौनक नहीं है, आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी नहीं है तो मुस्कुराहट भी नहीं है, ठीक है जनाब। झुर्रियां जनाब देर से आती हैं, अगर आपके अंदर मुस्कुराने की आदत है, आप दिल से मुस्कुराते हैं तो कहते हैं कि जनाब जो है झुर्रियां कम आएंगी, इसके असरात आपके जो है खुश मिजाजी, मुस्कुराहट, चेहरे के असरात कहते हैं कि नरम रखे, जिससे उम्र के असरात जो झुर्रियां होती है वो भी कम आ गई। तो भाई ज्यादा पुरकशिश नजर आता है इंसान जब मुस्कुराता है, ठीक है ना। फेशियल मसल जो होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है मुस्कुराने से। आप देखिए ना, अगर आप सारा दिन मुंह सुझा के रखेंगे, जरा थोड़ी देर के लिए मुंह सुझाइए ना जनाब, कोई हरकत नहीं है ना, मुंह सुझाने में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन आप थोड़ी सी स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए थोड़ा सा जी, बिल्कुल देखे कैसे आपके चेहरे के ऊपर एक हरकत आई है, एक मूवमेंट आई है, और यही मूवमेंट आपके स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जनाब आपका स्किन जो है आपकी फ्रेश फ्रेश नजर आती है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे भाई इतनी महंगाई के दौर में जबकि 500 के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है, कौन मुस्कुराए जनाब, कौन मुस्कुराए, मुस्कुराहट तो अब कहीं दूर चली गई है। तो जब मुस्कुराएंगे नहीं तो भाई प्यारे भी नहीं लगेंगे, ग्लोइंग स्किन भी नहीं होगी, चमकदार स्किन भी नहीं होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। तो मैंने आपको एक दफा बताया था कि जब शैतान को अल्लाह ताला ने कहा था ना कि इस जन्नत से निकल जाओ, ठीक है जनाब, जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुम मर्दूद हो गए हो, तुम
दफा हो जाओ यहाँ से, जन्नत से निकल जाओ। तो क्या पहली धमकी जो शैतान ने दी थी ना अल्लाह ताला को, जो पहली पहली बात कही थी, वो ये नहीं कहा था कि मैं बंदों को नमाज से रोकूंगा, वो ये नहीं कहा था कि मैं बंदों को जकात से रोकूंगा, वो ये नहीं कहा था कि मैं हज और उमरे से रोकूंगा, उसने ये नहीं कहा था कि मैं रोजों से इसको रोकूंगा, नहीं कहा था कि मैं तिलावत से रोकूंगा। यानी कि पहला पहला थ्रेट जो अल्लाह ताला को शैतान ने दिया था ना, वो ये दिया था कि अच्छा मुझे तो निकाल रहे हो जन्नत से, लेकिन देख लेना आप, तुम्हारे सारे बंदे जो है ना नशुकरे होंगे। यानी कि पहला पहला जो थ्रेट है, जो पहली पहली कोशिश इंसान के ऊपर शैतान करता है, वो नशुकरी इंसान के अंदर पैदा करता है। जो पहला पहला पहली पहली जो धमकी कह लीजिए, या पहला पहली जो बात कही थी शैतान ने अल्लाह ताला को कि देख लेना मुझे तो सजा दे दी है, अब देखना तुम्हारे जो बंदे हैं ना इसमें ज्यादातर लोग नशुकरे होंगे। तो भाई बंदा वही नहीं मुस्कुराता जो नाशुकरा है। अगर शुक्र की आदत आ गई तो हर दिन मुस्कुराएगा। खुशी के लिए आपको पता है मुस्कुराने के लिए खुशी चाहिए, और खुशी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। खुशी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर कोई बोले कि यार मेरी तो नौकरी नहीं मिल रही, मेरी तो नौकरी नहीं है, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मेरी तो शादी नहीं हो रही है जी, मेरी तो शादी नहीं हो रही, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मेरे तो बच्चे नहीं हो रहे, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मेरे ऊपर तो कर्जा बहुत सारा है, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मेरे तो पैसे पूरे नहीं होते, मेरी तो तनख्वाह कम है, मैं कैसे मुस्कुराऊं। तो भाई ये सारे नशुकरी की बातें हैं। अगर आप शुक्र करने के ऊपर आ जाए ना, तो अपने जिस्म को देखिए कि भाई आज के दिन में आपने कोई टैबलेट नहीं खाई है, कोई गोली आपने नहीं खाई है, तो भाई खुश हो जाइए और मुस्कुरा दीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दीजिए। ये मुस्कुराने के लिए क्या कोई लंबी लंबी बड़ी बड़ी खुशियों की जरूरत होती है? घर में आए हैं, अगर आपको बच्चे खेलते खेलते कूदते हुए नजर आ गए हैं, इनके अंदर कोई ऐब नहीं है, तो जनाब उनको देखकर खुश दिल को खुश कर लीजिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लीजिए कि जनाब खुश हो जाइए उनको देखकर, है जनाब। घर में काम करने वाली बीवी जो है, खिदमत करने वाली बीवी मिल गई है, तो उसको देखकर जो है खुश होकर मुस्कुरा लीजिए। तो भाई अगर मुस्कुराने के ऊपर आए तो भाई बहुत सारी बातें आपके पास ऐसे हैं। अगर आपका घर किराए का नहीं है, ठीक है जनाब, घर अगर आपका किराए का नहीं है, आपका अपना घर है, तो भाई उस घर को देखकर खुश हो लीजिए और मुस्कुरा दीजिए, ठीक है जनाब। आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, किसी का आपने कर्जा नहीं देना है, ठीक है जनाब। कोई दरवाजा नहीं खटखटा आपके घर, आपके घर में तीन वक्त का खाना मिलता है, हर सीजन के कपड़े पहन लेते हैं, भाई और खुशियां क्या चाहिए। ये इतनी सारी खुशियां आपके पास आस पास है, बस शैतान आपको उनको महसूस ही नहीं करने देता। अगर आप इन खुशियों को महसूस कर लें तो मुस्कुराहट हर वक्त चेहरे के ऊपर रहे, लेकिन हर वक्त मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर रहे, और जब मुस्कुराहट होगी तो आप प्यारे लगेंगे, और आप प्यारे क्यों ना लगे, जबकि प्यारा लगना तो आप सबका हक है।

जनाब, तो ढेर सारा मुस्कुराइए भाई, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। और एक खुशी, जब हम खुशी की बात करते हैं जनाब, और एक जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा मसला होता है कि दर्द जो होता है ना, दर्द जनाब, दर्द एक ऐसी चीज है सामीनी ग्राम, कि अगर दर्द आपके घर में किसी एक बंदे को भी है ना, कोई एक बंदा भी अगर आपके घर में दर्द में मुबतला है, जोड़ों के दर्द में मुबतला है, कमर के दर्द में मुबतला है, शेटी का पेन का मरीज है, एक टांग में उसको दर्द होता है, कमर का दर्द उसको होता है, जिस्म का कोई भी हिस्सा फालिक ज़दा है, उस वजह से उसको उठना उठाना बिठाना चलाना या किसी का उठते बैठने में तकलीफ होना, यानी कि बड़ों की तकलीफ को जो फर्मा बरदार औलाद होती है ना, वो भी महसूस कर रही होती है कि भी मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे ताया, मेरी ताई, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे मामा, मेरे मामी जो है तकलीफ में मुबतला है, तो उनकी उनकी तकलीफ आपको भी महसूस होती है। और जब तक उसका दर्द खत्म ना हो जाए, खुशी नहीं होती घर के अंदर, मुस्कुराहटे भी नहीं होती। तो भाई केसन का काम खुशियां बिखेरना है, मुस्कुराहटे आपके चेहरे के ऊपर लेके आना है। तो हेल्थ सेगमेंट में हमारे पास एक बहुत ही काबिल एतमाद, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, और उसका नाम है केसन शिफाय दर्द। आप यकीन कीजिए, अल्लाह को जान देनी है जो जो मैं बात करने जा रहा हूँ। एक 55 साल से ऊपर की बूढ़ी औरत है जो हमारा शिफाय दर्द लगाती हैं, इस्तेमाल करती हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई तीन चार दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि बेटा सरेकी में उन्होंने कहा कि त्वरा जरा तेल है ना केसन शिफाय दर्द, ये सारे जीवन का सहारा बढ़ गया, यानी कि हूँ सारी जिंदगी जरिए ना इसी के सहारे चलती पे। कहने का मकसद ये था कि भाई अब हम बूढ़े हो गए हैं ना, तो यही हमारा सहारा है। जब हर वक्त जिस्म दर्द करता है, कहीं पर बाजू ने दर्द किया, कमर ने दर्द किया, कंधों ने दर्द किया, टांगों ने दर्द किया, इसको उठाते हैं और बस मालिश करते हैं। गोलियों को तो हमने एक अरसा हुआ कि अलविदा कह दिया है, जब से ये तेल कंपनी, इस कंपनी ने बनाया। आप यकीन कीजिए, ये उसकी वर्डिंग थी। और कहते हैं कि कहती है कि ये अब हमारी पिछले 2 साल से कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जिस तरह रोजाना खाना पीना है, पानी पीना है, कपड़े पहनना है, तो ये इसका होना जरूरी होता है। जब भी, अच्छा मैं आपको बताऊं, जो पेन किलर्स होते हैं ना, पेन किलर बहुत दफा आप लोगों को बताया, अगर आप थोड़े अरसे के लिए खाते हैं, सर में दर्द हो गया, बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ना मुझे इतना शदीद किस्म का सर में दर्द हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। हालांकि मैंने इसको कभी भी सर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अचानक जहन में आया और मैंने इसको जाकर अपने माथे के ऊपर ऐसे थोड़ी देर के लिए लगाया। आप कहते हैं कि यकीन कीजिए, मुझे पता भी नहीं चला और वो शदीद किस्म का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। ये उस 55 साल से ऊपर की बूढ़ी अम्मा है जिसका मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ। तो भाई बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ये तब्दीली लेके आया है, क्योंकि उनका चलना फिरना आसान हो गया है। उन लोगों का ना सिर्फ चलना फिरना आसान हुआ है, बल्कि उठना बैठना, उनका नमाज पढ़ना, रुकू में जाना, फिर रुकू से उठना, तशहद में सजदे में जाना, तशहद पर बैठना, उठना बैठना, सारे मामलात हल हुए। बहुत सारी कहानियां हमारे पास हैं इस ऑयल के हवाले से, क्योंकि ये इतना सुपर क्लासिक किस्म का ऑयल है कि ये आम जड़ी बूटियों वाला तेल नहीं है भाई, ठीक है जनाब। और हमारा दावा है कि आप पूरी मार्केट घूमें, पहले मैं कहता था कि डेरा और पहाड़पुर की पूरी मार्केट घूमें और एक एक स्टोर के ऊपर जाएं, एक एक पंसारी के पास जाएं, एक एक मेडिकल स्टोर पर जाएं, पूछें कि ऑस्ट्रिच ऑयल है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं शुतुरमुर्ग को, क्या तेल है, तो आपका जवाब नो में मिलेगा। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ टांक वाले लोगों को कि जाएं और 180 दुकान है आपके बाजार के अंदर, 180 दुकानों के ऊपर जाइए और पूछिए क्या ऑस्ट्रिच ऑयल है आपके पास, किसी और कंपनी के सिवाय केसन के किसी और कंपनी का आपको नहीं मिलेगा। ये इतना जबरदस्त किस्म का ऑयल है कि आपने खरीदना है और 2 दिन के अंदर ये आपको मुतासिर करेगा, आपका दर्द बिल्कुल जी खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। और अगर आप जड़ का दर्द का जड़ से खात्मा चाहते हैं, तो भाई इसको जो है आप कम से कम जो है 4 से 6 हफ्ते यानी कि 1.5 माह तक इसका इस्तेमाल करें, आपका पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पट्टों का दर्द, फालिज से मुतासरा आपका जिस्म, या कुछ ऐसे बच्चे छोटे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और 2 साल के होने के बावजूद भी चल फिर नहीं सकते, ठीक है जनाब। तो ये अमेजिंग रिजल्ट रखता है अपने अंदर और पट्टों के अंदर जान डालता है जनाब, जिस तरह हम कहते हैं ना केसन का हेयर ऑयल आपके बालों के अंदर जान डालता है,
बिल्कुल उसी तरीके से केसन का शिफाए दर्द इनहेंस ऑस्ट्रिच ऑयल जो है आपके पट्टों के अंदर घुसकर, ठीक है जनाब, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है जनाब, ये आप जब टेबलेट खाते हैं ना, जोड़ों के दर्द होता है आपको, ठीक है जनाब, कमर का दर्द होता है, डिस्क में प्रॉब्लम होता है, वो उसका काम होता है सिर्फ उन मैसेजेस को ब्लॉक करना जो आपके बॉडी से आपके दिमाग को पहुंचते हैं और आपका दिमाग बताता है कि इस जगह के ऊपर दर्द हो रहा है, ये बेसिकली मैसेजेस। लेकिन जैसे आप टैबलेट खाते हैं वो कॉक्स वन और कॉक्स टू इनहिबिटर होती है। कॉक्स वन कॉक्स टू एक केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी से रिलीज होते हैं सिग्नल्स की सूरत में और आपके दिमाग को पहुंचते हैं और फिर आपको दिमाग बताता है कि फलां जगह पर आपको दर्द हो रहा है। इसी तरीके से उन गोलियों का काम उन सिग्नल्स को सिर्फ ब्लॉक करना होता है, कि यानी कि जो दर्द तो आपके बॉडी में एज इट इज हो रहा होता है, लेकिन आपके दिमाग को वहां से मैसेज डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वहां से कॉक्स वन कॉक्स टू निकलना बंद हो जाता है। और जैसे कॉक्स वन कॉक्स टू इनहिबिशन उसकी होती है तो आपके दिमाग को मैसेज दर्द का नहीं जाता और आप समझते हैं कि आपका दर्द खत्म हो गया, ठीक है जनाब। ये टेम्परेरी दर्द होता है, इसलिए हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना ये तो दफा वक्ती होती है गोलियां, यही वजह है कि वो एक गोली जो है वो उन सिग्नल को ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 5 घंटे रोकेगी, उसके बाद गोली आपके जिस्म से निकल जाती है, यूरिन के थ्रू आपके जिस्म से छोटे पेशाब के जरिए वो जो गोली होती है वो निकल जाती है। जब वो जिस्म से निकल गई तो फिर आपको वहीं पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। दर्द तो हो रहा था, दर्द आपका खत्म नहीं हुआ था, उन सिग्नल्स को टैबलेट ने ब्लॉक किया था जो आपके दिमाग की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब आप नेचुरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो और होता है, वो डायरेक्टली वहां पर जो दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से हो रहा होता है, उसको ट्रीट कर रही होती है। पट्टे की कमजोरी है, हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पर खुश्की है, क्या मसला है, ऑयल स्पेशली उसी जगह को टैगल कर रहा होता है और उसे, यही हम कहते हैं कि ये जड़ से खात्मा करता है। टैबलेट वक्ती तौर पर आपके सिग्नल्स को ब्लॉक करती है कि वो दिमाग तक सिग्नल्स नहीं जाते और आपको दर्द महसूस नहीं होता। जैसे 6 घंटे गुजरते हैं, गोली का असर खत्म, दर्द उधर वैसे ही हो रहा होता है और फिर आपको महसूस होने लगता है। तो भाई ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं केसन ऑस्ट्रिच ऑयल की सूरत में। बहुत ही अमेजिंग ये ऑयल, बहुत ज्यादा इसके फायदे। और अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जो पिछले 8-10 साल से दर्द वाली गोलियां खा रहा है तो उसके ऊपर रहम कीजिए। खुदा ना खासा बहुत दफा आपने सुना होगा कि लोगों को खून की उल्टियां आती हैं, वजह यही होती है कि वो बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के दर्द वाली गोलियां खा रहे होते हैं। और ये जो दर्द वाली गोली होती है जिसको हम मैरून कलर की गोली होती है जो 20 रुपए का पत्ता मिलता है, ठीक है जनाब, वो आपके सिग्नल्स को तो ब्लॉक कर देता है लेकिन वो आपको बहुत बड़ा नुकसान करता है और आगे जाके, क्योंकि एक एक गोली जब लॉन्ग टर्म आप खा रहे होते हैं तो वो एक गोली नहीं होती है, वो एक टैबलेट नहीं होती है, वो एक चाकू होता है, वो एक छुरी होती है जो आपके मैदे के ऊपर जाके लग रही होती है, फिर आपको मैदे का अल्सर होता है और खुदा न खास्ता ये खून की उल्टी के साथ ही जिंदगी का खात्मा हो जाता है। तो जनाब बुजुर्गों को, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो खुदा रा उनको जो लॉन्ग टर्म आपको पता है कि भाई इसको हमेशा जोड़ों का दर्द रहता है, इसको हमेशा कमर का दर्द रहता है, इसको हमेशा जो है ये मसला रहता है, इनको हमेशा जो है नमाज पढ़ते तकलीफ रहती है, उनको गोलियों से महफूज रखिए। केसन का शिफाए दर्द अपने घर में रखिए, अपने बुजुर्गों को लगवाइए अपनी निगरानी में। अगर आप कर सकते हैं तो 3 दफा इसकी मालिश कीजिए, ठीक है जनाब। अगर आप नहीं कर सकते तो 2 दफा कीजिए, और अगर 2 दफा भी नहीं कर सकते तो 1 दफा रात को सोते वक्त जरूर कीजिए, बेटर है, ठीक है जनाब। सबसे बेहतर है कि सुबह दोपहर शाम 3 दफा इसकी मालिश कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो 2 दफा जरूर कीजिए, और अगर 2 दफा भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 दफा जरूर, क्योंकि जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल जितने भी होते हैं इनके साथ दो चीजें अटैच्ड हैं, एक मेहनत और दूसरी लगन। मेहनत और लगन, आपने ऑयल चाहे ऑयल वो सर वाला है चाहे दर्द वाला है, ठीक है जनाब, इसके ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे लगन के साथ करेंगे तो आपका मरीज बहुत जल्द शिफायाब हो जाएगा, ढेर सारी दुआएं आपको मिलेंगी और बहुत सारे नुकसान, जो जिगर का नुकसान होता है, जो मैदे का नुकसान होता है, जो कि आपके किडनी का नुकसान होता है एंटासिड खाने से लॉन्ग टर्म में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने साल में 1-2 दफा खा लिए, महीने में 1 दफा खा ली, कोई इशू नहीं, लेकिन जब कोई ऐसा मरीज है जो कि रेगुलर खाता है तो उसके लिए पेन किलर बहुत ज्यादा नुकसान का सबब बनते हैं। टॉपिक के लिए यूज करवाएं जनाब, और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट, हम कहते हैं कि 5 से 6 मिनट के अंदर
जितना भी किराने किस्म का दर्द होगा वो जाता रहेगा, यानी कि छठे मिनट के अंदर ही जनाब जो है बंदा जो होता है वो मरीज जो होता है वो दर्द से निकल जाता है। तो जनाब आप मुझे तीन बड़े शहरों डेरा इस्माइल खान, टांग और पहाड़पुर में सुन रहे हैं, और हमने तमाम यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं, जो जनरल स्टोर हैं, जो कॉस्मेटिक स्टोर हैं, इन सब के ऊपर हमारा ये प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं केसन शिफाए दर्द ऑयल, जो कि दर्दी ऑयल है, जो कि ऑस्ट्रिच ऑयल है, यानी कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से हासिल किया गया तेल है, और इसके हजारों लोग सेहत याब हो चुके हैं हमारी इस प्रोडक्ट से। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी कंपनी इतने कम वक्त के अंदर इतनी कामयाब कैसे हुई है, इतने कम वक्त के अंदर हमने 30 से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बना लिए हैं, तो मेरे ख्याल में कि ये उन लोगों की दुआएं हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है और उनको लगा है कि जनाब कितने पैसे उन्होंने पहले हजारों रुपए लगाए और सिर्फ 700 रुपए का एक ऑयल खरीद कर इन्होंने अपने उस गम से, उस दर्द से खुद को निजात दिलाई है।

0: जनाब केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप।
1: भूल जाओ अब वो तेजाबियत का गम, कुदरत की ताकत से हाजमा से ठरदम।
0: जी जनाब, कुदरत की ताकत से हम आपका हाजमा बिल्कुल जी दुरुस्त करेंगे, आपके हाजमे को कंट्रोल में लेके आएंगे, लेकिन उस वक्त जब आप 150 रुपए लगाएंगे और केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप खरीदेंगे। राजा गफूर हमारे साथ आ चुके हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, हाजी बिस्मिल्लाह, खैरियत
0: है? सही किवें हाल है चंगे वदे वे? ठीक ठाक,
2: अल्लाह पाक दा एहसान है, ठीक ठाक। तुसा सुनाओ, खैर खैरियत
0: है? असादे सही, हाजमा कंट्रोल सिरप ने लोगों ने बहुत सारे मसले हल कर छोड़े ने, तुम्हारे पास इस्तेमाल थी ना पिए सही?
2: हाय हाय, अरे कसम है, ओए ठार लिखे ने
0: हैं जी, लोग ठड्डे ठीक है ना सारा सिरप पी के
2: ठीक है ना, रोटियां वाट गई ना, खाने वाट गया, रोटियां भी आ दिया।
0: बिल्कुल, जेको भूख ना लगदी होवे सही, भूख ना लगना मैदे दी बहुत बड़ी खराबी होंदी, जेले तो भूख नहीं लगदी ना तोड़ा मैदा खराब ही वे सही, 100% खराब है तोड़ा मैदा। बिल्कुल जबरदस्त खावन लग वेंदे वे, तो लगदा ही है, ते जान ही बढ़दी है, इवे है ना सही?
2: लंबी
0: गल त्रै त्रै बोतल पीवो, एक पहली बार इस्तेमाल कर पता लग पे, मैं चाह पीना बैठा नहीं, मैं पता ही लगता भी होगी ऐसे, क्योंकि मेरी चाह ठंडी थी वैंदी, अगर मैं दरमियानी चाह ना पीवा था। पहली शीशी ते आराम आवेंदे, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब दे विच जिवें असा छे पए उवे डेरे दे विच, ते इंशाल्लाह हुन टांक विच पहुंच गए, ते लोगों को शिफा मिलदी पई है, ते इंशाल्लाह सारे यूज करे सन। बहुत मेहरबानी सही, तुहाडी शुक्रिया। जनाब राजा गफूर, ये हमारा सेल पॉइंट है इनके पास, पंज गिराई के अंदर कांटा सादात जो है पंज गिराई में, ठीक है जी, ये यहाँ पर इनके पास केसर के सारे प्रोडक्ट होते हैं, और यकीन कीजिए छोटी सी इनकी शॉप है, और अगर मैं पिछले 3-4 महीनों का आपको इसका हिसाब किताब बताऊं, तो 1 लाख से ऊपर की हमारी सेल नौजवान कर चुके हैं, ठीक है जनाब, और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इतनी ज्यादा डिमांड है इनके पास। जी एक और कॉलर हमारे साथ, जी अस्सलाम वालेकुम। सर जहर नसीब, जहर नसीब, क्या हाल है जनाब? ठीक है सर,
3: कैसे माशाल्लाह, फतेह खान की बात की मैं तस्दीक करता चलूं कि हाजमा कंट्रोल सिरप पीने से ना मैदा बिल्कुल ठंडा ठार हो जाता है।
0: ठंडा ठार,
3: मेरी बेटियां और उनके बच्चे मेरे नवाज से बड़ा खुश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितनी भी गर्म चीजें मैदे में पहले चली जा चुकी थे तेजाबियत, तो और उनकी गर्मी मैदे की हीट वो खत्म कर देता है
0: जी।
3: और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जितनी तारीफ करें केसन की, ये तो कम है, ये क्योंकि हमारा अपना आजमाया हुआ तजर्बा है। चाचा फतेह खान तो ऐसे लगते हैं जैसे 9-8 साल से बच्चा हो, चाचा क्यों कहते हैं फिर, इसकी कितनी उम्र है?
0: हम लोग जो चाचा कहते हैं तो हम भी चाचा कहते हैं, क्या कहते हैं?
3: प्यार से चाचा कहते होंगे, ये तो बच्चा या जवान लगता है, नौजवान माशाल्लाह।
0: बस आपकी बात सुनकर ना उनका 2 किलो खून बढ़ गया।
3: सलील भाई ज्यादा टाइम नहीं सुनकर, मैं बाइक पर हूँ, बड़ा दूर से आ रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम आपका मुझे तड़पा और सता रहा था, मैंने कहा केसन की और सलील भाई की आवाज और तारीफ ना सुनूं तो मजा नहीं आएगा, मेरी हाजिरी के कारण सबको सलील भाई
0: नजर
3: आता है, सबको सब बहनों भाइयों को सलाम,
0: बहुत शुक्रिया जब नजर।

0: जनाब जाइए खरीदिए, घर में रखिए, क्योंकि जनाब बदहजमी भी होती है, बाज़ औक़ात भूख भी नहीं लगती, कुछ भारी चीज़ आप खा लें, ठीक है जनाब, और बाज़ औक़ात जो है ज्यादा खाने पर बदहजमी होती है, गैस हो जाता है, खट्टी डिकारें आती हैं। यार यार मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेडिकल की फील्ड में जो सिरप डॉक्टर आपको 450 रुपए का लिख कर देता है ना, डॉक्टर हजरात जो होते हैं, कुछ नहीं होता भाई। डॉक्टर की जो एंटासिड, इसको बेसिकली ये एंटासिड क्लास होती है, मैं खुद 12 साल गुजार के आया हूँ, यही वजह है कि ये प्रोडक्ट मैंने खुद लॉन्च करवाई है और अथेंटिक कंपनी से लॉन्च कराई है, फार्म 7 अप्रूव्ड, ये हमारी प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये इसको डॉक्टर लिख सकते हैं, प्रोफेसर लिख सकते हैं, स्टोर वाले जो है इसको बेच सकते हैं, मुकम्मल तौर पर इसकी कंप्लीट इसकी जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल हुई पड़ी है इसके ऊपर, ठीक है जनाब। तो हाजमा कंट्रोल सिरप जो है किसन का, बात तो हम शिफा दर्द की कर रहे थे, ठीक है जनाब, लेकिन बात फिर जब किसी एक प्रोडक्ट का भी जिक्र होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लग जाती है लोगों की कि भाई इसके बारे में तो मैं बात करूं, इसके बारे में तो मैं बात करूं। जैसे शबरा उस्ताद कैसे हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, खैर खरियत
0: जनाब? जनाब क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है? वे तो खैर खरियत नाल माशाल्लाह। खुशी जरूरी है, खुशी दर्द न होना जरूरी है, शिफा दर्द को शुरू थे लेकिन पहुंचे बैठे हाजमा कंट्रोल सिरप से।
1: जी जी, वैसे तो है ना, जब तक इंसान क्योंकि इंसान 360 जोड़े, उस दिन अगर हिक इंसान बेआराम रहा, लेकिन खास कर जंघा का दर्द अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत कमरा दिलाता फरमावे, लेकिन जंघा ही टांगा वो घर बैठा होंगे तो सहारा दींदा रोज रोज ना बेटा आखिर मजदूरी चल रहा है, दर्द है बहुत सारे लोगों का, कोई इलाज को नहीं, दुनिया पूरे वर्ल्ड का इलाज को नहीं, इस टाइम ही को नहीं, लंबे अरसे वक्त ही कह रहे लेकिन लंबे अखीर रह, लेकिन सफाए दर्द कीमती बिल्कुल मुनासिब है अलहमदुल्ला, जात अयल अगर शुक्र मुर्ग अयल अगर थी वे तो बिल्कुल अस आज तक नहीं सुना, ये सिर्फ शुक्र मुर्ग अयल आस्ट्रेलिया का बिल्कुल परफेक्ट, उसे झाट नहीं अमल करेंगे सिर्फ मालिश कर थोड़ा गर्म करके, तो बिल्कुल इंसान का जो है ना वो जो मसला होंगे खुद ब खुद पुरानी लग लेंगे, तो फिर एक शीशी अगर इस्तेमाल करे थी दूजी के उम्मीद जो नौबत ना थी अगर हो सकी, बाकी जो इंसान को समान देखो सैकड़ी मच्छे आ गए जी, पेंट देते लाओ तो बहुत अच्छा है, कमर देते लाओ तो बहुत अच्छा है, सर देते लाओ तो बहुत अच्छा, इसी के लिए खूबी तो इसकी कीमत बिल्कुल मुनासिब है, जैसे टाकलों को आसू तो टाकल मेरे बड़ा डिस्काउंट किया ने अच्छा कुछ तुसा डिस्काउंट पहले ही कंपनी जितनी मेरी नहीं तुसा वेट कम पेट कम है, चाहे जफरानी सोप है, चाहे शफाए दर्द है, चाहे आजमा कंट्रोल है, तो सारे सारे भरपूर अल्लाह पाक तेरी कंपनी से तेरे आले आयाल की बरकत रखे, तो बड़े तुस अपनी सखाफे का नजारा की तरह और तुस पहले दीते रिलीफ दीते हर एक को दीते जो ये फरी ही नहीं तो इस्तेमाल थी है ता जो रहे ना तो हूँ ताक लंग हाके तो मैं ये आक्षा जो ताक रहा हूँ तो इसका फायदा चाहो क्योंकि ज्यादा मुद्दा थी तुसा नहीं रख सकते आखिर तेरी कीमत है, तो मैं सारा को आक्षा शफा दर्द तो हाजमा कंट्रोल ये घर जो मेरे ये लाजमी है ये हर वक्त होना चाहिए और मेन मछली ना को शुरू थी जन तो मैं सारे सुनने को सलाम दे सी के तुसा ईद का कोई पैकेज या कुछ है तो चलो इना लोगों ने मारे कर लो ईद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: शबरा उस्ताद के कुरसानल मौजूद हैं जनाब, अच्छा जी वो आपको बताएंगे एक दो दिन के अंदर कि क्या कोई ईद ऑफर हमारी आ रही है या नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त महंगाई के हवाले से और हमने कीमतें किसी चीज़ की भी नहीं बढ़ाई हैं, आपको पता होगा किसी भी चीज़ की हमने, हालांकि हर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ा दी है लेकिन हमने अभी तक किसी चीज़ की भी नहीं बढ़ाई, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर आप लोगों के लिए जी जनाब कुछ रिलीफ अगर आपको बड़ी ईद के ऊपर हम दे सके तो जरूर देंगे। टांग वालों के लिए रिलीफ मौजूद है और मुझे हर रोज तस्वीरें आ रही होती हैं, वो तस्वीरें बड़ी प्यारी होती हैं, दाढ़ी वाले बुजुर्ग होते हैं पगड़ी पहनी हुई हमारे प्रोडक्ट लेके जा रहे होते हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है उन तस्वीरों को देखकर जो मुजीब भाई हजरत खान डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मुझे रोजाना भेजी जाती हैं कि भी आज आप इतने पैकेज चले गए हैं, आज इतने लोग लेके गए हैं, इतना अच्छा जनाब क्या कह सकते हैं, बहुत शुक्रिया उनका जो लोग एतमाद कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप फिर से आएंगे, ये आप मेरे ऊपर एहसान करके आए हैं, मेरी बात सुनकर ये आप प्रोडक्ट लेने के लिए आए ना, अगली दफ़ा इंशाल्लाह आप अपने दिल की सुनकर आएंगे और फिर से केसन के प्रोडक्ट लेके जाएंगे, और यही जो अब लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा डबल डबल, आज 1,000 के लेके जा रहे हैं, तो अगली दफ़ा ना सिर्फ आप अपने लिए ले आएंगे बल्कि साथ में जानने वालों के भी लेके जाएंगे। आप बहुत मीठा प्रोग्राम है सब सुनने वालों को सलाम, मोहम्मद अजहर पहाड़पुर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया फातमा हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं इस्लाम भाई मैं आज 5 दिन के बाद मैसेज कर रहे हूँ, कैसे हैं भाई, अरूबा आपी रानी परी को मेरा सलाम हो गया और तमाम भाइयों का सलाम, बहुत शुक्रिया। सलाम भाई रोनी पहाड़पुर से, भाई कहीं केसन की मिर्जा साहिबा की तरह तो ये आज सुबह हमने पहाड़पुर में मॉर्निंग शो के अंदर मिर्जा साहिबा की कहानी सुनाई है, तो वो मेरे ख्याल में सुबह भाई ने मैसेज किया था तो वो अभी मिल रहा है मुझे, बहुत प्यारी कहानी है, कल आपको सुनाएंगे। ये जो हमने एक सिलसिला केसन जोड़ी का उसके साथ हमने कहानियों को रिलेट किया हुआ है कि जिस तरह वो माजी की कहानियां अमर हो गई अपनी सच्चाई वफादारी की वजह से, बिल्कुल उसी तरीके से केसन की भी एक जोड़ी है, तो वो पुरानी जोड़ियों के किस्से हम सुना रहे हैं। उस दिन आपको भी एक सुनाया था मेरे ख्याल में हीर रांझा का, कल आपको मिर्जा साहिबा की जो दास्तान है ना जोड़ी की, ये जो जोड़ी थी उसकी दास्तान सुनाएंगे। साकिब हमारे साथ हैं चश्मा मिराज से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खलील चाचू तो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हादी सड़क माशे, इतनी वफा नहीं है कि किसी को दो दुख दूं, जब कोई नसीब में ना हो उससे बार बार तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, हमजा खेमटा हमारे साथ मौजूद है मूसा वाली पिपला से, माफी वो खुशबू है जो इंसान अपने गुरूर को मिटा कर रिश्तों पर छिड़े और फिर दिलों में मोहब्बत दोबारा महकने लगती है। हाँ जी, बुरे हमारे साथ अमीर हुसैन कहते हैं जनाब हुसन जमाल है शबाब है केसन, ब्यूटी भरी किताब है केसन, जन्म याद है केसन होवे हर सोने दा ख्वाब है केसन, अमीर हुसैन कोट वाली दाद कुल शायर सनल दुर्यादन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ दे रही हैं, कहते हैं तो यूजर अपॉन केसन को अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साजी, वेलकम टू टी टाइम शो। साजी हमारे घर में भी सब सोए हुए होते हैं, मैं आपके शो का वेट करती हूँ, केसन प्रोडक्ट में कोई केमिकल हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ऑनर ही मुखलिस है और प्रोडक्ट्स भी खालिस हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपके साथ मैं भी जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। जी जनाब, लिसनर भी हमारी गारंटी देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्यादन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, आपका शुभ बास्त है आपकी तरह सब सुनने वालों को सलाम। भाई आपने अभी फक्की की कीमत 400 बताई है और हमने तो 450 की ली है, बिस्मिल्ला जनरल स्टोर से इरम शहजादी, उसने 50 रुपए आपसे ज्यादा लिए हैं जी। चलो जी, उसे भूख लगी होगी तो उसने कहा चलो सामने से, उसके सामने दिबेलों वाली शॉप भी है ना बिस्मिल्ला पहाड़पुर में, तो आप उससे बोले भाई भाई ने कहा है 400 की देनी है, क्यों जुल्म करते हो यार हमारे ऊपर, 400 रुपए की है, 400 रुपए की 15 दिन वाली है और जो महीने वाली है वो 700 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, शादाब शकूर कश्मीरी है, मैं आपका प्रोग्राम डेली सुनता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, कल आपने हेयर की जोड़ी के बारे में बताया, वो आज मैं लेकर आया हूँ डीए खान से, इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे होंगे जी, अच्छे गुमान के साथ आपने लिए ना, बाज लोग ये कहते हैं भाई प्रोडक्ट तो हमने ले लिया है, अब हम आपको रिजल्ट भी बताएंगे, ठीक है, वो अच्छा गुमान नहीं रखते, वो नेगेटिव गुमान भी माइंड के अंदर होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ये भाई देखे चीज खरीद कर कहते हैं कि आपकी जोड़ी खरीदी है मैंने और इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा होगा, तो जब आपने इंशाल्लाह लगा दिया तो भाई अल्लाह तो शिफा डालेगा उसके अंदर, अल्लाह ताला तो रिजल्ट डालेंगे उसके अंदर, जरूर डालेंगे, तो इंशाल्लाह ये अच्छी आदत है, इंशाल्लाह कहना चाहिए हमेशा और इंशाल्लाह से बरकत भी होती है। काम के अंदर आसानी भी आ जाती है। ठीक है जनाब, केसर के जनाब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और यकीन कीजिए मैं जब भी हेल्थ प्रोडक्ट की बात करता हूँ लोग धड़ धड़ कॉल्स करते हैं, जिस तरह आज आप देख रहे थे, क्योंकि हेल्थ में हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ना, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। यही शुतुरमुर्ग का तेल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो केसर का शिफाय दर्द है ना, एक कंपनी 1900 रुपए का बेच रही है, 60 ml एक चरक, एक कंपनी 1400 रुपए का बेच रही है यार, और हम 700 रुपए में बहुत ही मिनिमम। इसमें एक बात यह है कि हम इसके ऊपर दुकानदार को भी बहुत कम बचत देते हैं, क्योंकि दुकानदार भी कहते हैं यार 700 रुपए की चीज है और हमें 100 रुपए भी नहीं बचते, इधर हम 300 की चीज खरीदते हैं तो हमें उसमें 200 बच रहे होते हैं। तो हम कहते हैं भाई हर जगह एक जैसी बात नहीं होती। ये प्रोडक्ट हमने गरीबों के लिए, क्योंकि ये इतना महंगा तेल है कि गरीब लोग खरीदते नहीं थे इसको, ठीक है जनाब, अमीर लोग ही खरीदे जा रहे थे, वो लोग खरीदते नहीं, तो हमने अपना प्रॉफिट कम किया, दुकानदार का कम किया, पैकेजिंग का कम किया, ठीक है जनाब, और तब जाके हमने आपको ये रीजनेबल रेट में ये ऑयल प्रोवाइड किया है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट वाला हमारा ये शिफायत दर्द डेर इस्माइल खान में हर जगह मौजूद है, पहाड़पुर में हर जगह मौजूद है, ठीक है जनाब। अब 3 स्टेशन हो गए हैं तो दुकानदारों के नाम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पहाड़पुर में जैसे कि नवीद जनरल स्टोर है, जीशान जनरल स्टोर है, डेर इस्माइल खान में जैसे अमान हारसेरा, फारूक हारसेरा, फैमिली शॉपिंग सेंटर, इन सब के पास, इस तरह टांग के अंदर जो है मंसूर जनरल स्टोर, सदाम प्लाजा, सदर प्लाजा, इन तमाम जितने भी बड़े छोटी बड़ी दुकानें, हमने पूरी कोशिश की हुई है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने, अगर फिर भी आपको हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती है तो हमारे नंबर पर रब्ता कीजिएगा 03449363666, 03-944-936-3363 और 03-13-798-4554 नंबर पर रब्ता करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी प्रोडक्ट चाहिए लेकिन आपके इलाके में नहीं मिल रही, तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी और आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह वाजे तौर पर फर्क महसूस करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 4 बजे, कल तक के लिए इजाजत।

बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली पऊं, बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली पऊं, सही बुक दे वे या छज दे वे, उंदी जात कुहिन अख्तियार सवे, लुक छप दे वे गज वज दे वे। उंदे खादिम हैं भईवाल निसे, दिवे आखूं कल या अज दे वे, सही जानिन सही दियां गई जानिन, तुने बुख मारे भावें रज देवे।

FM 88.4 अमन रेडियो की नशरियात के नाल तुहारा मेजबान तुहारा भीरा तुहारा सेवक तौला बलोच तुहाको अपने मन भावने प्रोग्राम दे विच सही खुशामदीद आ दया ते अज दा प्रोग्राम तुहारा ते साडा 5-6 बजे तक ते अज दे प्रोग्राम को तुहां तक पहुंचाने पैना साडे स्टूडियो इंजीनियर नाजमान खान खटक। सुने सजड़ो उम्मीद है जिस जित सारी आवाज़ वहन पई असी ऊँ जाते मुहब्त होसन खुशियां होसन और सारे यार दोस्त अपनी जिंदगी दे विच मगन होसन ईद दियां तैयारियां दे मशगूल होसन सही ईद कुर्बान दी पई है और कुर्बानी ना है एसार दा कुर्बानी ना है मुहब्त वटावण दा कुर्बानी ना है अपनी जिद को अपनिया ना को अपने बोझ को अपने हसद को कुर्बान करण दा। ते उम्मीद है तांग ही चलाते उस तुसा क्योंकि प्रोग्राम की तांग ही आँदी है सत दीवार वेला आंदा है अठवीं दीवार वतवारी सारी वाला मुलाकात थी सही क्योंकि जिंदगी देर जिंदा रहे इंसान तो कह ना कह मकाम ते वाला मिल गिंदा है और सही जिंदगी बड़ी अजीब चीज़ है कदा गुजार तो गुजरती नहीं जो कदा खड़ा तो रुकती नहीं अपनी ही रफ्तार मगा ने अपने ही एक मयार दे विच लगी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल दो वहन पई है हज़ार साल अगर सात सावां दा होवे वत भी निखेड़ा मौत ते है और जिंदगी इवें गुजरनी चाहिए है जो तेरे मिलन तो याद रखें और अगर मर वन तो दुआवां याद रखें। आज तुहाड़ा ते साडा जिहड़ा तांगा है सांगा है नाता है ओ सही 5-6 बजे तक हो सी ते तुसा साडे स्टूडियो दे विच कॉल भी करनी है और मैं तुहाको नंबर दसेंदा जुलां साडे स्टूडियो दा 09638511488 सही ए साडे स्टूडियो दा नंबर है तुसा दे उत्ते कॉल करनी है ते दसना है जो तुहाडी जिंदगी किवें गुजरदी पई है। मैं तो प्रोग्राम को सुरीला करण दे कीते पहले पहले सुनने हैं और असा को अज खसूसी एक रिक्वेस्ट भी थी है सारे स्टूडियो इंजीनियर नाजमान खान खटक दी और उन्दा ये आखाण आई कि यार अज एक गाना सराय की दा सारी फरमाइश ते भी लाओ चा जो सुन के चा सा वजे तो सुनने उन्हां दी खुशी दे विच कि रात आले मेल विच सारे लोग सुने हैं।

आपको कालिक ख्वाब च डिठम अपने उचे थले दी इक चुन ते खड़ के शहर दे कुत्ते कठे करके बोटियां में वरतेंदा खड़ा कुत्ता नू हड्डियां पेंदा खड़ा।

0: अच्छा ही साकू कुश्तियां दा ऐलान मौसूल थिया है कल इंशाल्लाह हथाला दे मकाम दे उते बरोज़ मंगल 19 तारीख को एक वड़ा दंगल है 5 बजे जरा ये दंगल लगना है जी। ठेकेदार दंगल इजाज पहलवान ते मंदी पहलवान पहलवान कौन कौन इंदा भी ऐलान करेंदे हैं। जी बिल्कुल, सब तो पहली जेरी कुश्ती है और वड़ी कुश्ती है जी, रिजवान पहलवान कमरपुल मुकाबला करे सी हैदर अली पहलवान मुल्तानी दा, जेरा के बहु आला पाए दा पहलवान है और जहाँ बहु वड़े फैन इन और इतना हताले ते लड़ भी चुका है और जहाँ को देखने दे की थे न सिर्फ लोग जोक दर जोक आने बल्कि कुश्ती दे ऐसे दाव पेच जानता है कि आपने देखने वाला को कदा मायूस नहीं किया और खूबसूरत पहलवानी दे नाल रिजवान पहलवान कमर पुल जरा मिनटा सकिंटा की कुश्ती डहा के ते मदे मुकाबले पहलवान दी चेल ला के अगले दंगल दो तैयारी करें दे। जी अगला पहलवान है साडे फखरे मोहब्बत गरम मोहब्बत दी सरजमीन का जमा होया ऐसा पहलवान जै मुख्तसर ने वक्त दे विच अपनी धरती अपनी वसुवास अपनी जमीन अपने लोगों का नाँ रोशन किया गरम मुहब्बत का नाँ रोशन किया जेरा ना है इकराम पहलवान अल मारूफ नीला पहलवान जेरा मुकाबला करे सी असु पहलवान मुल्तानी दे नाल और खूबसूरत किस्म का ये भी जोड़ो सी जेरा तुआ को बड़ा लुत्फ दे सी। जी अगला जोड़ जेरा है वो किसी तारुफ दा मोहताज नहीं सरजमीन है मुहब्बत है आसिफ पहलवान गरम मुहब्बत मुकाबला करे सन अख्तर बलोच लिया दे नाल आसिफ भी वड़ा नामी ग्रामी पहलवान है और सुना कुश्तियां करें दा वादे अजकल ते जिथा आसिफ दी कुश्ती होवे ते लोक ना होवे थी भी नहीं सकदा। जी अगली कुश्ती है यासीन पहलवान कोट दौलत मुकाबला करे सी काशी पहलवान बखर बखर दी सरजमीन बलोचा दी सरजमीन जी काशी पहलवान मुकाबला करे सन यासीन पहलवान कोट दौलत दे नाल। अगला पहलवान है जी अदनान पहलवान जिंदानी बड़ा खूबसूरत पहलवान है नौजवान है मुकाबला करे सन अंसर पहलवान भट्टी पंजाब दी सरजमीन जिला लिया दे नाल। जी विकी पहलवान गुमला मुकाबला करे सन इस्माइल पहलवान दे नाल और इस्माइल पहलवान भी बिल्कुल बड़ा खूबसूरत पहलवान है इस्माइल पहलवान दा ता जोड़ इवें ही होंदा है जो कोई पता नहीं लगता कि किवें थीवें दे। अगली खूबसूरत कुश्ती है जी पहचान पहलवान जाड़ा मुकाबला करे सी मिनी पहलवान कनोड़ी दे नाल। मिनी पहलवान कनोड़ी बा मुकाबला पहचान पहलवान जाड़ा तेराली पहलवान जाड़ा दे मेरे ख्याल है या भाई या कजन और बड़े खूबसूरत कुश्ती करें दे वदेन। जी जुबैर पहलवान बगवानी मुकाबला करे सन मीसम पहलवान फतेह ये भी खूबसूरत प्रोग्राम हो सी ते रिजवान फतेह मुकाबला करे सी मोहम्मद पहलवान मक्कू तौसा शरीफ। इन इलाका साढ़े इलाके दे पहलवान छीना दे पहलवान तौरान दे पहलवान शादे दे पहलवान मते दे पहलवान जमाल ममरेज दे पहलवान और इलाके दे खूबसूरत पहलवान भी कुश्तियां करे सन उए कुश्ती हो सी तुफैल पहलवान गरा मिठू वाले दी ते यूनिस पहलवान गरा मिठू वाले दी और उन्होंने कुश्तियां भी दीद दे काबिल हो सन। तुसा बस शिरकत करनी है कल इंशाल्लाह 5 बजे हथाले दे उते दंगल हो सी ठेकेदार इजाज पहलवान ते मंदी पहलवान दा। सही ऐलान तुसा सुन के दाओ सी ते काल भी असा को मौसूल थींदे पैन एक लाइव काल गिन गिन दे वत तुहाड़ी तरफ वाला मौसीकी दी तरफ वैसू ते वत देखा सुन दे कौन कित कितो है मेरा ख्याल है काल ड्राप थी गई है अतौला ही सखेल भी को सुनने हैं ते वत वापस वलदे हैं जी अतौला ही सखेल भी सारे इलाके दे पसंदीदा शायरिन मौसीकार भी हैं जाकू सुनन दे कीते
1: सखमो ते लून सटे

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Dil se jo nikalti hai, dilo tak jo jaati hai, malumat ko jagati hai, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकी नशिया, हमारे साथ रहे।

नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला यो रास नो टेंशन ब्यूटी क्रीम दमक धनो पेरसरो हल्को चियानो और दमक विष्टानु तपारा नो टेंशन ब्यूटी क्रीम उस्तासो पुखपल हार डिस्ट्रिक्ट टांग के हपासा न मिले विदेशी पहर मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर के अवेलेबल दी नो नामी या सते नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला रास नो टेंशन ब्यूटी क्रीम।

0: ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नेक्स्ट कलर अब्दुल शुक्र जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी नाजमान से खबर है, माशाल्लाह जी तबियत मुशदा वक्तों ने बिल्कुल शेदी सो खबर है कुर्बान कम से ना
1: रहमतुल्ला
0: से पठन

अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू भाई? शो बहुत बेस्ट है भाई, आज तो मेरा सलाम भी शामिल करो। फरी हो रिया खेन वकार खुमा वरीशा हरिम नसीमा इमन सारा रवीन को मेरा सलाम। एंड भाई मेरी सिस्टर को बताओ कि मैं बर के नहीं में सुमी जोया। ओके जोया जमा खोरे खास।

0: ओए अच्छा फिर स्पॉन्सर शो तो एक घंटा होगा दूसरे घंटा फ्री शुक्र हो गए या नहीं और दगा टाइम की इसी लगी दिल भी देता कना गिरमे के नास में जैसे मिनट की जहाँ सुने रहा
1: हर किसे दली दो
0: तरीका की जहाँ
1: खबर ही ले जा
0: तुम रचे कुम देखने में तरीका मुश्किल वाले
1: हल पढ़ के जीने लो ना
0: ओ किसी نظمان دا شیر دے محمد زلی خان تا ڈالی وچی
1: چرتے
0: چٹول سردا کشما